0: cosa?
1: Ehi, Rosie! Rosie! पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
2: क्या?
1: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
3: वो होने से क्या होता है?
1: जब मुझे हुआ था तो मुझे नींद नहीं आती थी।
3: मुझे भी नहीं आती।
1: मुझे भूख नहीं लगती थी।
3: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
1: दिल में दर्द होता था।
3: दर्द तो मुझे भी रहता है।
1: बस यानी कि तू गई काम से।
3: क्या?
1: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है।
3: वो क्या?
1: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा।
3: मारिया!
1: रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
4: क्या हुआ योयो?
1: देखो ना, क्या हो गया है अपनी रोजी को।
4: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
1: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
4: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है, और इसका इलाज सिर्फ जूता सुंघा।
1: नहीं!
4: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
2: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
4: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
5: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
6: अच्छा?
5: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
6: बाप रे,

0: होठों पे सच्चाई रहती है,
1: जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
2: होठों पे सच्चाई रहती है।
3: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती है तो आंखें भर आती है। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

जहां रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो

पहले तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंद नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: चुप क्यों हो?
1: नहीं तो?
0: खोए खोए से क्यों हो?
1: नहीं तो?
0: फिर कुछ बोलो ना।
1: क्या बोलूं?

संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

खुशी के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। परमानंद से माँ रिनिया सरोजनी देवी पातन दिन मारा पिन, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार को 61 साल की आयु में इन जस्तख यार औत माँ रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारा पिन के बेटी अम्स्टरडम एनफील्ड रोड की रहने वाली श्रीमती श्यामला पाटन दिन की मृत्यु अम्स्टरडम के आएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। परमानेंट से माँ रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारा पिन, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 61 साल की आयु में इन जस्तख यार औत माँ रिनिया सरोजनी देवी पातन दिन मारा पिन की बेटी अम्स्टरडम एनफील्ड रोड की रहने वाली श्रीमती श्यामला पातन दिन की मृत्यु अम्स्टरडम के आएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज शुक्रवार के रात में 6 बजे से 7:30 बजे तक फनाफन फंसूर तोथालफ दिला आरीना के मुर्दालय होर्नबुख इन अम्स्टरडम जोइटोस में, और अर्थी के अंत्येष्टि क्रिया बखराफनिस घर घराना के लोगों में बसलूतन क्रिंग में आने वाले सोमवार को किए जाएंगे। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 46 29 86 64। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार पाटन दिन और परिवार मारा पिन के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। आज शुक्रवार 26 तारीख जून का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का। हमसे पहले प्रोग्राम को बना रही थी आर जे रशदी दंकबेल पैन दख्तु खवेंस पैन वीकेंड मोइसे रहिए। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी बहो आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। करीबन 16 मिनट व्यतीत हो चुके हैं 9:37 ऊपर नहीं खुद मोर खालमा। चाहे जहाँ पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते होंगे सुनते ही जाइए, दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। मैं हूँ सुभाष शिव गोविंद और जहाँ तक मेरी आवाज पहुँचती है वहां तक हम आप सभी को आज का सुबह का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूँ। जो भी आज आप लोग करेंगे इस गर्मी मौसम में मौज से करिए, प्यार से, दुलार से। हमारे प्यारे सुनने वाले आज का प्रोग्राम कुछ मिले जुले संगीत से आप सभी को हम खिदमत करने वाला हूँ। और गर्मिया में लेखक का आकर खोई कौन सा गाना आप लोग आज सुनेंगे, तो चलिए प्रोग्राम को हम आरंभ करते एक सुंदर सा भजन जो आप लोग सुनेंगे अनुराधा पौलवल जी।

जय जय संतोषी मातंग। इस तरह से खूबसूरत सा भजन जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, आज शुक्रवार 26 तारीख जून का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन।

हमारे प्यारे सुन बलू, है तो बहना वीकेंड, वीकेंड शुरू हो गए हैं और सवाल है कि इस गर्म मौसम में का पकाओ खो यार, आज जबाल बात खाओ कौकन और का बनाओ खोई इस गर्म गर्म मौसम में। हमारा व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 02-363-0808 पर अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बोलना है या कोई गीत सुनना है। और हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 02-409-0807 पर आप उतार कर सके सुबह में 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक, फन मान दख्त में फ्राइडे ना यार, फन मान दख्त में सैटरडे।

लाओ कितना मोई गाना ऐसे ऐसे तुम ना देखो और हम तुमको चुरा लेंगे और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे।

वेल यार दिल दिल मेरी ना माने, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू एड उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और देखा जाए सत्य भी प्रोग्राम को बैठकर सुन रहे खुद मूर्ख एंड यू एड उजाला रेडियो।

बलियारी गर्मिया में तोर दिल चाहे जो बोलते धड़कत हो धड़कत हो वेल चाहे जो जी करिए वेल चाहे बाहर जाइए वेल अब की बार जब बाहर जाइए तो छाता लेके जाइए चाहे पानी बरसे ना बरसे बाकी छाता लेके जाइए एंड नेम खनुख वातर में या वेल अगर आपको बाहर कहीं नहीं जाना तो घर में रहिए यार हमारे साथ दीजिए 12 बजे तक आपके साथ है सही आत्मा जी के आवाज़ में

बलियर जादू है नशा है क्या गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। और देखा जाए राजेश बनर से भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं, ना बैठ कर सुने काम करे हम सुनो सही तो उसमें भाई जी वैरक सर। और चलिए ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ एंड दल हक में भाई राकेश भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने खुद मूर्खा।

फेलियर तुम्हें चाहते हैं हम हर जन्म में न तुम्हें मांगते हैं हम। बहुत विशाल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। करीबन 5 मिनट बाकी रहा 10 बजे में 5 मिनट फॉर 3 और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे देखा जाए दलहा शहर में देखा जाए भाई लक्ष्मण शहर में बैठ करके सुने खुद मूर्ख

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं आज शुक्रवार 26 तारीख जूनी का प्रोग्राम अजस्मंदा फ्राइडाग वीकेंड। अरे यार बात खाओ कोकन फंदाग का पकाओ को यार इस गरम गरम मौसम में, तुम लोग पकाइए कि ना पकाइए आज। वाल दैट इज गोइंग ब्रोडाग। तो चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते, दिन में 12 बजे तक आपके साथ हम रहेंगे। दनहाख में भाई आनंद जग्गू भी प्रोग्राम को सुने, खुद मोरख। अब ये गाना तुम्हारे नाम

वेल यार धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और बोले मर के भी दिखाना है। कुमार सानू एंड अनुराधा पॉल ना कुमार सानू एंड अलका याग्निक जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने होफ दर्ब शहर में मानो भी प्रोग्राम को बैठकर सुने अपने सुनुषक के लिए गाना को मांग किए हैं एंड वो भी प्यार के साथ यू आर उजाला रेडियो जबाल हतिस बैना वीकेंड गरम गरम वीकेंड बा आज

तेरा ही याद आए। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और हमारे प्यारे सुने वालों हतिस बैन बैन आप तो लोग से बोली तो वीकेंड और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक बैठक गाना हो जाए और इस बैठक गाना को गाने वाले होंगे विशाल हीरा के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। वेल हमार रनिया आई बॉय

वेल यार हमारे रनिया बता दे बतिया द यंग टाइगर ऑफ बैठेगाना विशाल हीरा आई बॉय चलन दे

यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, करीबन 25 मिनट व्यतीत हो चुका है 10 बजकर। खुद मोर खालमाओ जो भी आप लोग करते होंगे प्यार से दुलार से कल दिखाई नानत वैरक सालमाओ। और चलिए इस बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, तो ये गाना पेश है सौंदर्य के लिए प्यार।

वेल वेल यार, तुमसे तुमसे बोले कितना प्यार है, बोले कैसे बताऊं, तुमसे प्यार है यार, कितना प्यार है तुमसे, हर दुआओं में तुम हो। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, कितना सा बिसाल खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अब की बार चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए अरुण बाबूलाल भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम या बेओ

वल्यार बोले चांद को क्या मालूम, आईसरा से करोड़ का दिल, चुराना वाला हंट मिले स्माइटी मुकेश जी के आवाज में, गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और अब की बार देखा जाए गायत्री आयत ब्रेडा, लेकिन आज काम करे रोतरदाम में वैरक से गायत्री, अब ये गाना तुम्हारे नाम।

मुकम्मल यार तेरे सिवा कुछ भी देखता नहीं, खोया हूँ बस तुझ में यार। क्या गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, और जिस तरह से हम आप लोग को बता चुके हैं कि का पकाओ कोई का खाओ कोई, वेल आज हमारे यहाँ सबको अपन हरिया उलुट डे शब्द वखानी को हुक्म आता तेस वारम डोस का खा कोई पता ना है, भूजल भात खून या वेल मकल खून भूजल भात। और देखा जाए मीला भी प्रोग्राम को बैठकर सुन खुद मूर्ख है, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। आज सबको भूजल भात बनाइए बो या आई बोल चलन दे अमंग स्पंग यारा।

वेल वेल यार, आओ इतना विशाल इतना मोई गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और चलिए अब की बार यार, और देखा जाए वो कई समय पठाई से बोले सुभाष आज उर्दी के दाओ मैथ वाइटिंग वेल फिश

औरों के छोड़ के ये गर्मिया में भाई अभी डोक्सा बनाएगा खूब तीता तीता डोक्सा लेकर और जय परभा अमसरम में रोटी बनावे रोटी से के ए अमांग लेकर यार अमांग स्वीतियार और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो ये गाना पेश है भाई के इसके लिए जो उर्दी के दाल और वाइटिंग बनाएगा और डोक्सा के गोश कुप्ती ताती दाल

चल यार जन्म जन्म का साथ है। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और पौने पौने पौने ग्यारह का वक्त वत फॉर एलव खुद मोर खलमाओ यू आर उजाला रेडियो आई बोल।

फिलहाल ये रिश्ता बस बना रहे। इश्क की बाजी आउजर से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रही थी, और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो ओ मेरे शहर में, जहां पर इस वक्त खास करके रखा जाए रूबेन एंड सुनीता भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने खुद मर्ख, तो ये गाना आप दोनों का नाम कर देता हूं बहुत ही प्यार एंड मोहब्बत के साथ। करीबन 10 मिनट बाकी रहा 11 बजे में, अम सुलम सैतोस में हमारे मामी खैरदा जी भी प्रोग्राम को बरकर से खुद मुर्ख।

Wel, maar Pierre is zo wel na de break, na de reclame. आप लोग से फिर हम मिलेंगे और कोशिश करेंगे ये गीत फिर आप सभी के लिए पेश करने के लिए।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं आज शुक्रवार 26 तारीख यूनी का प्रोग्राम। अच्छा इस वंदा फ्राइडे सेवन मिनटन ओवर एलो एट लास्ट यूर चखात नहीं है जब लास्ट घंटवा देखिए कितना हल्दी दोनों हो जाए 12 बजे तक आप लोग के साथ। इस वीकेंड में आप लोग जोचे भी करेंगे यार मोई से करिए आहिस्ता धीरे धीरे करिए बांध बहुत गर्म बात दिन भर पानी पिए न पकाइए बाकी दिन भर पानी पिए या आई बॉय देखिए नदी अनंत वैरक साइन वैरक से मोई से काम करिए धीरे धीरे काम करिए। आप सभी को शुभ वीकेंड फैन वीकेंड तो खबर हमारे तरफ से यार। तो चलिए गाना की ओर जो गाना आप लोग रिक्लाम से पहले सुन रहे थे वही गाना फिर से हम आप सभी को सुना देते हैं। गाना ब्रा बिसाल्बा मोई गाना भाई यार

0: वेल यार, दिल दिल नहीं लगता तेरे बिना, बोले दिल कहीं नहीं लगता। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। करीबन 15 मिनट व्यतीत हो चुका है, 11:15 और आप लोग यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुन रहे हैं। सलाम शहर से प्रोग्राम को हम बना रहे हैं।
1: बेवफा होकर भी खुद को वफादार बताती है, जो दिल तोड़ कर किसी और की हो गई वो मोहब्बत नहीं, बस याद बनकर सताती है।

वेल यार, मैं भी आज तेरा इंतजार करता हूँ, बस यही मेरी दुआ है, तो खुश रहो। और इस तरह से गाना जो आप लोग सुने अरिजीत सिंह जी की आवाज में, वेल क्या गाना यार। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है यार,

यूं ही खूबसूरती है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, देखा जाए खान सर के विनोद लक्ष्मण भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख। और ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूं भाई।

0: दिल झूम झूम गाए, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने आकाश मिश्रा के आवाज में, और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे अमसलम फैंस फोल्डर में एमी जी भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने। तो एमी ये गाना तुम्हारे नाम का डेटा हूँ।
1: छोटे भी कहानी नहीं होती जो छोड़ जाए साथ बीच सफर में, उनकी कमी कभी पुरानी नहीं होती।

बल यार तेरे तस्वीर से बातें करता हूँ, हर रात तुझे याद करता हूँ। आयुष शर्मा से अरिजीत सिंह जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुनने वालों, थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ हम देने वाले हैं, और करीबन 12 बजे तक आपके साथ हम देने वाले हैं, और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और देखा जाए अलमेरे में जहां पर इस वक्त सुनीता भी प्रोग्राम को बड़ी कर सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम।

वेलियर कितना मोई कितना बिसाल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे अरिजीत सिंह जी के आवाज में, और इस गाने को पसंद करने वाला है बात रेंगे में, जहां पर इस वक्त श्रीमान रजिन खुनकुन जी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मुर्खा।

कल्याण और इस तरह से अरिजीत सिंह जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। करीबन 10 मिनट बाकी रहा 12 बजने में, 3 मिनट फॉर 12 बैना 3 मिनट फॉर 12 एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए खास करके देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी की आवाज में वीकेंड से तो लोग से बोलिए बैना बैना वीकेंड यार गर्म गर्म मौसम में का कर खोई

पल यार अकेला हूं मैं, आई सरस द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह से नाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुनने वालों करीबन 7 मिनट बाकी रहा 12 बजने में, और चलिए गाना प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाते हैं। और ये गाना पेश है आप सभी सुनने वालों के लिए

हमारे प्यारे सुनने वालों, यही आशा उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आप सभी सुनने वालों को पसंद भी आई होंगे। हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। फिर कभी आने वाले दिनों में फिर हम आप लोग से मिलेंगे यहीं पर उजाला रेडियो पर। अगर आप लोग बाहर जाइए तो

इसका है इंतजार, मैं हूं ना। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, चलिए प्रोग्राम में एक आखिरी गीत हम ला रहे हैं और इसी गाना के साथ ही साथ हम आप लोग सब इजाजत चाहेंगे। आने वाले दिनों में फिर हम आप लोग से मिलेंगे। अपना वीकेंड तो लोग मोई से बिताइए, मोई से रहिए, मोई से पिए, मोई से खाइए, मोई से रहिए, जो भी करिए प्यार से करिए यार, दुलार से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज़।

प्यार का ये रंगीन जमाना याद रहेगा। उमर कैद फिल्म का नाम और आप गीत को सुने मुकेश जी एंड लता जी से। ये उजाला रेडियो है।

इतना है तुमसे प्यार मुझे, फिल्म सूरज का गीत और गाने वाले मोहम्मद रफी के साथ में सुमन कल्याणपुर।

बन के साथी प्यार की राहों में हमसे कभी तुम ना जुदा होना। गीत आप सुने मोहम्मद रफी अंदर लता जी से, फिल्म स्वीटहार्ट से, और ये उजाला रेडियो है। एक और गीत आप सुनेंगे अब, आशा जी की आवाज में होंगे।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल ना।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: मना कर।
1: उजाला रेडियो पर हमारा हिस्सा का प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जब आप चाहें यहीं पर आपसे हम फिर मिलेंगे। सुनते रहना।

बिनकोट रावल तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है सुन वालों। तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

मौसम कहता है स्वागतम। लता जी के साथ किशोर कुमार से गीत आप सुने, फिल्म तोहफा से निकाला हुआ। और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे मोहम्मद रफी साहब।

कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी का दिल वाला। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप गीत को सुने और फिल्म माया से निकाला हुआ। एनु मुकेश जी, फिल्म मिलन का गीत।

और जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। फिल्म जख्म का गीत आप सुने अलका याग्निक से, और ये उजाला रेडियो है।

एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे और फूल हैं फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। यस बॉस फिल्म का नाम, कुमार सानू एंड अलका याग्निक से आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम में सुने वालों। एक बार फिर अलका जी,

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा

अभी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा यह वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में यह हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा यह हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

राम करे कि ऐसा हो जाए कि मैं जागूं तू सो जाए, मेरी निंदिया तोहें लग जाए। मुकेश जी की आवाज़ और फिल्म मिलन का गीत अभी आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम में। अब हाँ, सुन गाना।

बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। और गीत आप सुने तलत महमूद साहब की आवाज में, फिल्म कैप्टन की शोर का गीत, उजाला रेडियो पर।

और देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा, सोचे भी तो क्या सोचे तुम्हारे बिना। लता जी के साथ आप सुने उदित नारायण को, फिल्म फर्ज का गीत, और ये उजाला रेडियो है।

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujjal Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujjal Radio और Ujjal Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujjal Radio

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

रात को जी, हाय रात को जी, बोले पपिहारा भेद खोले, तेरा मेरा मेरा तेरा हो भेद खोले, तेरा मेरा तेरा जी मैं

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो।